0: पर्यटक की नगरी पोखरा में मेट्रो सिटी हॉस्पिटल प्राली सृजना चोक पोखरा विभिन्न किसिम का विशेषज्ञ चिकित्सक सेवा को उपचार लिया जानकारी कराद
1: हमारा सेवा
0: हार्ट जोड़ने नशा तथा मेरुदंड रोग
1: जनरल सर्जरी सब प्रकार का ऑपरेशन सेवा
0: मृगौला तथा मूत्र रोग यूरो सर्जरी
1: पेट छाती मुटु थायराइड तथा मधुमेह
0: न्यूरो सर्जरी सेवा कार्डियोथोरासिक तथा वास्कुलर सर्जरी सेवा
1: पाल रोग
0: नाक कान तथा घाटी रोग
1: मानसिक तथा स्नायु रोग
0: प्रसूति तथा स्त्री रोग
1: छाला यौन तथा कुष्ठ रोग
0: नेत्र रोग
1: दाँत तथा मुख रोग
0: क्यान्सर रोग दूरबीन र लेजर प्रविधि प्रयोग गरी गरिने विभिन्न अपरेशनहरू अत्याधुनिक माइक्रो डिभाइडर प्रविधि द्वारा नाक कान तथा घाँटी रोगको अपरेशन मासिक नियमित खोप सेवा
1: चौबिसै घण्टा एम्बुलेन्स इमर्जेन्सी अत्याधुनिक प्रयोगशाला तथा फार्मेसी सेवा
0: सुविधा सम्पन्न आईसीयू सेवा
1: डिजिटल एक्सरे
0: सिटी स्क्यान सेवा
1: भिडियो एक्सरे इको कार्डियोग्राफी
0: इन्डोस्कोपी इसीजी इइजी पीटीए
1: फिजियोथेरापी युरोफ्लोमेट्री
0: केमोथेरापी
1: सुरक्षित गर्भपतन सेवा
0: होल बडी चेकअप हेल्थ प्याकेज
1: मेट्रो सिटी हस्पिटल प्राली पोखरा 8 सृजना चोक कास्की
0: फोन 061-572-648 572-849
2: खुट्टु खुट्टु पियो या सिप मा रमायो
3: अब घर दियो लाई की चीज को हर्डी
4: होइन रिफ्रेशमेंट सँगै न्यूट्रिशन दिन आयो मौसम
5: जलवायु परिवर्तन र रेड प्लस सम्बन्धमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको अडान
6: भूमि वन र प्राकृतिक स्रोत सँगको आदिवासी जनजातिको अन्यश्रित सम्बन्धलाई मान्यता देऊ
5: जल जमिन जंगल खानी र प्राकृतिक स्रोतमाथि आदिवासी जनजातिको स्वामित्व र नियन्त्रणको अधिकार सुनिश्चित गर
6: वन संरक्षण र व्यवस्थापन सम्बन्धी आदिवासी जनजातिको परम्परागत प्रणालीलाई मान्यता देऊ
5: स्वतन्त्र अग्रिम जानकारी सहितको मञ्जुरीलाई सुनिश्चित गर
6: पूर्ण र प्रभावकारी सहभागिताको व्यवस्था सुनिश्चित गर
5: आत्मनिर्णयको अधिकारलाई मान्यता देऊ
6: अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आइलो महासन्धि नम्बर 169 र युएन ड्रिफ कार्यान्वयन गर
5: नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ

0: कति छाप डिजाइन बे मारेगा ना खिनानी खनी तोला
1: खनाई बेवा ना सर बे रूपाकोट ज्योति सुन चाँदी दुकान महेंद्र फुलादी तोला
0: ए नई चाबा मारे दुकान पो मोना नई पेशोलाई नी चार चूरा रैया औठी हमेला झोका टस टिग्री हार तान चनाई तो होनी जग मात्र आंगी खैमा खैमा समस्या पर्दी र मार चुवल तुई बिसानारी बेल्ले छाबा पोपिम ओछे
1: हजुर किने झोको लाइनी छाबा छाबा छाबा मारे डिजाइन गहना चैदी म बिसा वा चुवल तुई बिसा रूपाकोट ज्योति सुन चाँदी दुकान पोखरा महेन्द्र पुलारी खो जु दुकान पोखरा महेन्द्र पुलाई विशाल बजार गेट गलो धिताई पालिकी चोकै यावै क्यार मोहै
0: जग मात्र आँगी रूपाकोट ज्योति सुनसादी दोकाने घी शाखा पोखराई महेन्द्र पुलरी अन्नपूर्ण सुपर मार्केट आडरे मुहै आसुम ल्यादो
1: समुताई रबा ता क्रिबा ज्याला जाति क्रिबा छतैरा नत खैमा बिलन चन्ने यामो
0: तोई निल तुई विश्या रूपाकोट ज्योति सुनसादी दोकान महेन्द्र पुल पोखरा सम्पर्क 061-568-15 98-560-35-815 प्रोप्राइटर दशरथ सुनार
1: छतैरा तान नि बिन्द
2: बाजेदेखि नातिसम्म पाइन मैले कुनै खोट त्यसैले भने जस्तो गहना किन्न जाउ है रूपाकोट।

0: था।
1: कैंसर सर्जरी राहतकारी हेरचाह
0: केयर गिवर हेरचाहकर्ता घरेलू सेवा
1: डॉक्टर लैब सेवा
0: औषधि डेलीवरी सेवा
1: उपकरण बहाल सेवा तपाईको निरंतर साथ र सेवामा हेलो होम केयर परिवार जस्तै हेरचाहमा हेलो होम केयर सिग्लेढुङ्गा पोखरा निबा गल्ली र बुढी बजार फोन 061 4 11 7 7 7 मोबाइल 98 5 60 89 2 77

0: पर्ने संपर्क पद्मश्री हॉस्पिटल एंड अलाइड साइंसेस न्यू रोड पोखरा
1: फोन 061 590 162 590 163

0: বাটসালিয়া পোখরা ক্লিনিক নিউ রোড পোখরা ফার্টিলিটি হোপ লাইন 01-597-0611
1: मम्मी गर्मी भयो के चिसो पिउन पिउनलाई चिसो उठाउ हार्लिक्स
2: हार्लिक्स
1: गर्मीमा नयाँ फ्रिक्स रिफ्रेशमेन्ट बार न्युट्रिसन मिक्स
2: चिसो हार्लिक्स
3: 93.4

0: कोलगेट मैक्स पे निंद्रा भगाओ ताजगी जगाओ।
1: मोबाइल अपग्रेड में खर्च गर्नुहुन्छ, घुम्न जान बचत गर्नुहुन्छ, अब भविष्य का लागि पनि सोच्ने कि
2: एनएमबी कैपिटल को एसआईपी हरेक महीना को सानो लगानी भोलि को ठूलो संपत्ति। एनएमबी कैपिटल को वेबसाइट वा नजिकै को एनएमबी बैंक को शाखा में गई आज एसआईपी शुरू गर्नुहोस्। ऑटो डेबिट सुविधा भएको एनएमबी कैपिटल एसआईपी, पैसा बढ़ने स्मार्ट तरीका।
3: एसआईपी मार्फत म्यूचुअल फंड में लगानी गर्दा जोखिम हुन सक्ने भएकाले योजना को विवरण अध्ययन गरेर मात्र लगानी गर्नुहोला।
4: सर्वाधिक बिक्री हुने ह्युन्डई गाडीको शोरूम पोखरामा, अन्तर्राष्ट्रिय स्तर तथा पोखराको प्रतिष्ठित लक्ष्मी ग्रुप द्वारा सञ्चालित शोरूम, सेल्स सर्विस स्पेयर पार्ट सबैको सेवा सहित एलआई मोटर्स। विस्तृत जानकारीको लागि एलआई मोटर्स बुद्ध चोक पोखरा, फोन नम्बर 0165274256357526।

0: नाचर बे कति छाब डिजाइन बे मारे गना खिनानी खनी तोला
1: खनै बिवा नाचर बे रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दुकान महेन्द्र पुलारी तोला
0: ए नै स्याबा मारे दोकान पो मोना नै प्रेसोलाई नै च्याबा चुरा रैया औठी हमेला झोका टस सिग्री हार तान चनै तो हो नि जगा मात्र आङी खैमा खैमा समस्या पर्दिर मार चुवल तुई बिसानारी बेल्ले छ्याबा कोपिम ओछे
1: हजुर किमे झोको लाइनी छाब छ्याबा छ्याबा मारे डिजाइन गहना चैदिम बिसा वा चुवल तुई बिसा रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दुकान पोखरा महेन्द्र पुलारी खोऊ चु दुकान पोखरा महेन्द्र पुलाई विशाल बजार गेट गलो धिताई पालिखी चोकै यावै क्यार मोहै
0: जगा मात्र आङी रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दोकाने घिस शाखा पोखरा महेन्द्र पुलारी अन्नपूर्ण सुपर मार्केट आडरे मुहै आसुम ल्यादो
1: तमुताई रवा ता क्रिबा ज्याला जाति क्रिबा छतैरा नत खैमा बिलन चन्न यामो
0: तोय निल तुई बिस्या रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दोकान महेन्द्र पुल पोखरा सम्पर्क 061-5808-15 98-5-60-35-8-15 प्रोप्राइटर दशरथ सुनार
1: छतैरा त तान निभिम्द
2: बाजेदेखि नातिसम्म पाइन मैले कुनै खोट त्यसैले भने जस्तो गहना किन्न जाउँ है रूपाकोट।

रॉयल मेटल इंडस्ट्रीज को उत्कृष्ट उत्पादन जिंदल एसएस पाइप नेपाल नंबर वन ब्रांड। नक्कली देखि सावधान, जिंदल को लोकप्रियता ने गर्दा नक्कली जिंदल बजार में आएको हुनाले प्लास्टिक में मात्र नभई पाइप में पनि जिंदल लेखेको पाइप मात्र खरीद गर्नु होला। टिकाऊ र गुणस्तरीय काम जिंदल पाइप हो यसको नाम।

0: बाजेदेखि नातिसम्म पाइन मैले कुनै खोट, त्यसैले भने जस्तो गहना किन्न जाऊ है रूपाको।
1: टाइम चेक।
2: यति बेला रातिको 10 बजेको छ।
3: यस टाइम चेक का प्रायोजक रूपाको ज्योति सुन चाँदी दुकान महेन्द्र पुल पोखरा।
4: किन्नुहोस् अब ढुक्कले सुनका गहना, गए अब रसायन केडियम राख्ने समय।
5: 93.4 रेडियो अन्नपूर्ण 93.4।